रे व्यापार नानक खटे सोतनी मल्ला पिना पीरा हमरा को नहीं हम किसी के नाय जिन्हें अर्जुन चाया किसी माय समाय पौड़ी सफल बिरख सुहावड़ा हर फसफल अमृता मन लोचै उन मिलनो क्यों बने किता वरना चेना बारा ओ अगम जिता ओ प्यारा जी का जो कुल पिता सेवा करी तू साड़ियां मैं दस्यो मिता गुरबाणी वंजे मारना बल्ले बल किता दसन संत प्यारा सुन लाए चिता जिस लिखया नानक दास तिस नाउ अमृत सगुर दिता श्लोक मिला पंजवा कबीर धरती साध की तस्कर बह संगाए धरती पार न व्यापई उनको लाहु लाए मल्ला पंजवा कबीर चावल कारणे तुक मोली लाए संकु संगी बैस देता पूछे धर्म राय पौड़ी आपे ही बट परिवार आप एक तिया अपनी कीमत आप ही जाती आ सब कुछ आपे आप पन्ने अपना किता आप वरने तन सो तेरा तान जिथे तू उठा तन सो तेरे पगर गिनी सच तू डिठा जिसनू तेरी दया सलाहे सोए तुद जिस गुर भेटे नानक निर्मल सोई सिद्ध श्लोक मल्ला पंजवा।

ताए वंतन त्रिभुवन रोम पौड़ी आपे की तो रचना पही रत्या आपे होयो एक आपे बहु पत्या आपे सो नमन आपे बावरा आपे जाने दूर आपे जारा आपे होवे गुप्त आपे प्रगटिया कि मन किस न पाए तेरी थटिया गैर गंभीरता पार गंत तू नानक वरतै एक इको एक तू शुद्ध राम कलिपि वार राय बलवंत तस्तै डू माखी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नाम करता कद करे क्यों बोल हो जो की वदै दे गुणा सब भैन भराव है पर अंगद दान पढ़ीवद नानक राज चलाया सतकोट सताणी नीमद लैने धरम सत सिर कर सीती अमृत पीमद मतगुर आत्मदेव दी खड़ग

सतगुरु का डूर जब कर संजमना तो धोर मुझ करू लाए मानसा जो पानी बूर वर है दरगा गुरु की तुर कुदरती दूर जिनसो आदरा लबे तू ओ ठरूर नौ नाम दान है तुझ भरपूर।

मैं तेरी ना तुम डोलो ना मंगते रख ली नी हर मेरी अब तब जब कब तू ही तू ही हम तो प्रसाद सुखी सद ही पौड़ी तोरे परोसे मगर बसो मेरे तन की तपत बजाई पहले दर्शन मगर पाए उपन कासी बसे आई जैसा मगर तैसी कासी हम एक कर जानी हमने तन जो इतन पाया मरते फूट गुमानी करे कुमान चुबे तिस सूला को काटन को नाई अजय सुचोब को बिल बिलाते थरके पुरख जाही कौन नरक क्या स्वर्ग बिचारा संतन दो राते हम काहू की कान न खड़ते अपने गुरु प्रसादे अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक पै है कोई न सके पुछानी संता मानो दूता डानो एक दुवारी मेरी

गुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम पारा सब त्यावै है तुझ जी हर सच्चे सिरजन हारा।

बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवरण त्यों जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दे मुझे अबरिया मरण काल का त्रास नवरिया जोसदा हमारे पच्छा श्रीअस तो जुजू करे हो रच्छा राख ले हो मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाई कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जिने आपस मारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पाल मोहबत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिट्टी ते कुंचर या स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट की पढ़ पढ़ की जाने जबद कर करा करता राव प्रजा तर तब देह पारा जबया कर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जिते बदनो सृष्ट सब तारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरहत नरालम जानत बेद भेद अरालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ता का मूढ़ उचारद भेदा जाको भेम न पावद बेदा ताको कर पाहन अनमान तो महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेवो निरंकार का चीनत न पेव

सिमट पर शंकर काठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम पव आद जुगाद स्वरूप संयम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दोट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तब शरण परे तिनके दुष्ट तुम तिनके दुष्ट दुखत हव मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट समटारे जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निकट नह है अच्छा हुई ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट अरंत काला कृपा दृष्ट तन जाह नहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद सिद कर्म सब होई दुड़ छा छप सकर न कोई एक बार जिंत मन संभारा काल पास से ताहु बारा जिन नर नाम तिहारू कहा दर्द दुर दुख तेरा कड़क कीत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैल हो बारी सर्व ठोर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को चय करता श्री अस तुज जप दयाला पूर्ण करां ग्रंथ तत्काला मन वांछत फल पावै सोई दुख नत सब आपत कोई अड़िल सुनै गुंग जो जाय।

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेवी है अहनिस सहज सुभाय। दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। हो वै सिफत कसम दी नूर अरसों कुरसों झटी है। उद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह सिरसाहां दै साह। जिस पास बैठे आ सो ही है

संजम तुम खंडे जम के दुख डांड सिमर है नाही जोन दुख निर्लज्जे पांड हर संग सहाई महा मीत तिस स्यो तेरा भेद बीदा पंच बटवारई उपज्यो महाखेद नानक तिन संतन शरणागति जिन

मेरे का वड प्रताप, प्रभ मेरे का वड प्रताप, सिमर सिमर सुख पाया, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख माही, चरण कमल रख मन माही, यो नानक दास बाकी ओट, यो नानक दास पर हो नाही जाते।

मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सकल पवन की शुद्ध, मन्ने मुह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाग न पाए, मन्ने पस्यों परगट जाए।

ओंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम घोर असंख अमर कर जाहि जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेच

हनुमंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण किते बिललाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने।

जो तिस पावे सोई करसी हुकम न करना जाई सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई मुंदा संतोख सरम पर झोली ध्यान

मानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चिंत नह पैब आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूपा नूप सरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहूं फूला राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आ जुगा स्वरूप सुन्यम भव आब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवा तो पाता सकल मलेच करो रण काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख्त हुआ मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छुए सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोखते रहा

हो बचाय कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखी अनको शह करता श्री अस तुज जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांच फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िला सुनै गुंग जो जाहे सुरस न पावई सुनै मूढ़ चितलाई चतुरता वई दुख दर्द पौ निकट ना तिन नरके रहै हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह सहस पणिजर्द सहस पुनतीन किहजै भाद्रव सुधि अष्टमी रविवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधार सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान नेक कह मत एक न माने ओ

मन होवे सारी है। जैसी अग्न उदर में है तैसी बाहर माया, माया अग्न सब एको जेही करता खेल रचाया। जा तिस पहना ता जमया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी त्रिसना माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरा मोह उपजै भाओ दूजा लाया, कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप मुल कहै मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसा विट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिला तिस नौ सिर सोपी है विच हो आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहा हर वसा मन आए। हर आप मुल कहै भाग तिना के नानका जिन हर पल्ला पाए। हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपे हो जी हो लाह खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कह नानक हर रास मेरी मन होवा वणजारा, ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत किता जित रह रस पल्लै न पाए। हर रस पाए पल्लै पिया हर रस बहुड़ न त्रिस नान लागै आए। एहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जिस आए। कह नानक होरा अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए श्रीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होआ चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ पहया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी गृहो मंदर बनया। हर गाओ मंगल नित सखीए सोग दुख ना व्यापए, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापए। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो। ए श्रीरा मेरिया इस जग मह आए कै, क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद श्रीरा जा तू जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया। कह नानक एहो शरीर प्रवान होआ जिन सतगुर स्यो चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम है जो तरी, हर बिन वरन देखो हो कोई हर बिन वरन देखो हो कोई। नदरी हर निहाले आए हो विस संसार तुम देख दे हो। हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन वरना कोई। कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलया दिव्य दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो साचा सुनना नो पठाए, साचा सुनना नो पठाए शरीर लाए सुन हो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस सुमाणी। सच लख विडाणी ताकि गत कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुन हो पवित्र हो बहो। सच सुनना नो पठाए हर जियो गुफांदर रख कै। वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरद्वारा लाए भावनी इकना दसवां द्वार दिखाया। तह नेक रूप नव नवनिधा तिस दंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारा जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहिला साचा कर गाव हो, गाव हो ता सोहिला कर साचा जिथे सदा सच त्याव हे। सचो त्याव है जा तुद भाव है गुरमुख जिना बुझाव हे। हो सच सबना काखा सम्मा है
ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹੇਲਾ ਸੱਚਾ ਘਰ ਗਾਵਹੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣਹੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂ।

अपने साजा पिंड तो नाम दूसरे साजिया करे सिंध थोचा दाता करता आप तू तुस्ते वह करे पसाओ तू जाने सबसे ते लैसे जिंद कवाओ करे सिंध थोचा।

0: लाट लिखा से जिन को लिख लाट लिखा से।
1: श्लोक वाला पहला पड़ पड़ गड्डी लदे हैं पड़ पड़ भाई ऐसा पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी का पड़े जेते वर्ष वर्ष पड़े जेते।

0: न सोए भैब खुम चढ़ाई शरम पाव तन होए नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोए न कोई महला पहला
1: लापाव दे राजा मेहता को वासिकदार काम ने सब छिया पे

तीर्थ नावा चेत सुभावा विण भाणे के नहाए करी जेती सिर टुपाई वेखा विण करमा के मिलै लय मत विच रतन जवार माणक जेक गुर की सिख सुनी गुराक दे बुझाई सभना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई जे जगचारे आर जा होर सुनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोई चंगा ना और खाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवे ता वातन पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोई न सुझे जे तिस गुण कोई करे सुने आए सिद्ध पीर सरनाथ सुने आए धरत तबले आकाश सुने आए दीप लोक पाताल सुने आए पूर्ण सकै काल नानक भगता सदा विगास सुने आए दुख पाप का नास सुने आए ईश्वर ब्रह्मा इंद सुने आए मुख सलाहन मंद सुने आए जो जुगतन भेद सुने आए सासत सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुने आए दुख पाप का नास सुने आए ससंतोख ज्ञान सुने आए अठ सठ काय स्नान सुने आए पट प्रभावे मान सुने आए लग सह ध्यान नानक भगतां सदा विगास।

को मन जान मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावत दरगमान पंचे सोह है दर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने ना ही समार कौल करम दया का पूत संतोख था प्रख्या जन सूत जे को बुझे अवस जयार तवले उपर किता भार धरती होर पर होर इसते भार तलै कमन चोर जी जात रंगा के नाम सपना लिखा बड़ी कलाम हो लेखा लिख जाना कोय लेखा लिखा किता होए किता तन सवाल रूप के ती दाप जाने कौन कूद की तप साओ को गुआव तिस्ते हुए लख दरियाओ कुदरत कौन कहा विचार बार न जावे एक बार जो तुद भाव है साई भली कार तुझ दस लम निरंकार असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरमो भक्त सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कमल कहा विचार वारण जावा एक बार जो तुम भावे साई भली कार तुम सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंत कोर असंख चोर हराम कोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराए असंख मिले चमल भक खाए असंख निंदक सिर करै भार नानक निज कहे विचार वारन जावे एक बार जो भावे साई भली कार तुम सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाओ गम अगम असंख लो असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखन बोलन बाण अखर सिर संजोग वखाण जिन्हें लिखे ते सिर नाए जे फरमाए ते ते पाए जेता कीता तेता नाओ विण नावे नाए को थाओ कुदरत कमल कहा विचार वार न जावे एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हथ पैर तन दे पानी धोत उतर सुखे मूत पलीती कपड़ोए दे साबुन लइया ओ धोए भरिया मत पापा का संग ओ धोपै नाव कै रंग पुन्नी पापी आखण नाए कार कर करना लिख लै जाओ आपे भी जापे खाओ नानक हुक्मे आव हो जाओ तीर्थ तप दया दत्त नाम जिगु पावे तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतर कर तीर्थ मल नहाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोई गिण गुण कीते भक्त न होए स्वस्थ आत्मानी ब्रह्माओ सत सुहान सदा मन चाओ कौन सो वेला वक्त कौन कौन थित कौन वार कौन से रुति माओ कौन चितो आकार वेल न पाईआ पंडती जो अले कुरान वक्त न पायो का दिया जे लिखा ले कुरान थित वार ना जोगी जन रतमाओ ना कोई जा करता सिटी को साजे आपे जाना सोई एव कराका क्यों सलाह क्यों वरनी क्यों जाना नानका कम सब कुआ का एक जो एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का हुआ नानक जे को आ पाओ जाने गगा न सोहाय पाताला पाताल रख आगा साया गास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन कवात सहस ठर कनक ते बसलु एक भात लिखा होए ता लिखिया लिखा होए विनाश अनंत वड्डा कि आप जाने आप साला ही साला है तू सुत न पाईया नदिया तैबा पवै समुद न जानिया समुद साहब सुल्तान गिरा सेती माल धन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो ना

0: प्रतिपाल हर अमृत नाम भोजन नित पुंच हो सरब वेला मुख पाव हो जड़म रात आप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो सुनिय रदास स्वामी मेरा सरब कला बनियाई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह
2: वाहेगुरु जी का खालसा।

गुरबाणी कह सेवक जन माना प्रतख गुरु निस्तारे पतित पावन भगत वच्छल कर्मा निदान गुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र निघी अगोश विच सुभाए मान जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारी साध संग जीओ सतगुरां दी बख्शिश कीती होई सब तो पहला फतेह प्रवान करो आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अपार रहमत बख्शिश सदका वडभागी गुरसिख संगतां ऐतवार दे सज रहे सुंदर दीवाना विच सतगुरां दे पावन पवित्र दर्शन दी दारे अमृतमई बाणी दा रस पिन्ना शब्द कीर्तन सत्कार योग रागी जत्थे दी मुबारक रसना तो सरवण करके मिले हुए मोलक मनुखा जन्म दे स्वासां कड़ियां समय नूं सफल बना रहे हो। गुरु प्यारी साध संग जी अज आपां तुरकी बाणी दे सब तो पहले रचनहारे भगत जन बाबा फरीद साहब जी हुणां दे 653वें मुबारक जन्म दिहाड़े आगमन दिहाड़े मना रहे हाँ अते नाल ही कौम दे महान शहीद कौमी परवाने जिन्हां ने कौम दी लथी हुई पग नूं सिर ते रखिया जां बाज राखे अमर शहीद भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा गदली अते अमर शहीद भाई सुखदेव सिंह जी सुखा गंगानगर उन्हां दे 9 अक्तूबर 1992 नूं शहीद होए सन पुणे दी जेल विच हस हस के फांसी दे रस्सियां नूं चुम्मिया जकारे छड्डे उन्हां महान शहीदां दा दिन भी आपां मना रहे हाँ। और गुरु प्यारी साध संगत जी उन्हां कौमी परवानियां नूं याद करना भी साडा कौमी फर्ज है। जिहड़ियां कौमां अपने शहीदां नूं भुल जांदियां ने सियाणे विद्वानां दा कथना है भी उह दुनिया तों कखां वांगू रुल जांदियां ने फिर उन्हां दा कोई वजूद नहीं रह जांदा। शहीद कौमां दा सरमाया होया करदे ने शहीदां तो सिख्या लै के कौमां अगे वधदियां ने अपने राज तख्त बनाउंदियां ने दुनिया ते अपना वादा करदियां हन और ऐसे शहीद ने उन्हां दा भी आपां दिहाड़ा मना रहे हां। धन बाबा फरीद साहब जी बाणी दे रचनहारे पहले भगत ने जिन्हां ने बाणी उचारण कीती ते ए भी आपां नूं बहुत घट पता होवेगा कि आसा दी वार दे 9 पौड़ियां समेत धन गुरु नानक देव साहिब महाराज जी ने पाक पटन जी दा पहला नाम अयोधन सी दरिया दे किनारे ते सो पाक पटन विच जा के ही ए बाबा जी दी गद्दी दे तीजे वारस शेख सो ब्रह्म दे कोल जा के एक दी उपासना कराउंदे होए एक दी सिफत विच उचारियां सन। इन्ना प्यार कीता सी इस महापुरश दी गद्दी नाल और इन्हां दी सारी बाणी 118 दे करीब शब्द सलोक ने जो सारी बाणी महाराज जी ने अपनी पोथी विच उत्थों लई जिस बाणी नूं धन गुरु अर्जन देव साहिब जी ने फिर बाद विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संपादना करन वेले

सो निहाल हो त्रिया काल यौन वाले गुरु कार्ज बई प्रोग्राम ने बुधवार को अखंड कीर्तन वीर वालों 6 बजे तो लैके 10 बजे तक गुरबाणी का कीर्तन होगा। संगतों को बेनती है बस चढ़ के पहुँच के आप हाजरियां लवाइए। धन धन श्री गुरु रामदास जी के आगमन कौर पर्व के संबंध में 16 तरीक न अखंड पाठ संभ अखंड पाठ साहब आरंभ हो गए। ऐतवार को भोग पाने ये अपन जो गुरबाणी समागम हो जा रहा है वह 15 तरीक तो शुरू होगा, जिस अपने को श्रीनगर वाला जथा तो होर ट्राई साइड तो जथे पहुँच रहे हैं। उन्होंने संगतों को बेनती है 15 तरीक शामा आज हाजरियाँ भरन गए। संगतों को बेनती है बस चढ़ पहुँच के आप हाजरियाँ भरीए। ये जो गुरु घर गुरु रामदास जी आगमन कौर संबंध में गुरु रामदास एसोसीएशन वीर वालों ये खंड पाठ सारिया सेवावान निभाइया जा रही। उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने साढ़े को अपने गुरु भाई रेशम सिंह जी आप जी ने 1:30 तक शब्द कीर्तन सारबण करवा के वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह।

0: नहीं ये इन्हीं ठीक है ऐसी बात नहीं करती
1: मैं थोड़ी नाम में
2: जाऊँ
1: को बोलो ना मुझे नहीं लगता मैं ध्यान रहने का
0: रहन तो हजे उमें रहें उपर ही पे रहें असं कर दें जो है जिस तरह सेट कर देंगे।

जन की कीनी पार ब्रह्म सार, निंदक टिकन न पामन मूले उड गए बेकार। जन की कीनी पार ब्रह्म सार, निंदक टिकन न पावन मूले उड गए बेकार। रहाओ जह जह देखो तह तह स्वामी, कोए न पहुँचन हार। जो जो करा वग्या जन की, होए गया तत्क्षार। करन हार रखवाला हुआ,

करनो हो तो सो ना कियो परयो लोभ कै फंद नानक समय राम गयो अब क्यों रोवत आंद मन माया मैं राम रहो निकसत नाय ना मीत नानक मूर्त जितर जो छाड़ नाय ना पीत नर कश और की और पई चितव तरे उठ गौर नानक पासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुखो की ओ ना कोए कौ नानक सुन रे मना हर पावे सो होए जगत पिखारी

जैसे मरत संकट मिटाए दर्श तुहारो होए, राम नाम और मैं गयो जा कैसा मने कोए। जैसे मरत संकट मिटाए दर्श तुहारो होए। मदावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस अधारो। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उड़तार। तुम संसार चरण लग तरी है।

अठो नंदन प्रथम राग पहरोवा करी पांच रागनी संग होचरी प्रथम पैरवी बलावली पुनयाकी गावै बंगली पुनस लेखी की पही बारी ए पहरों की पांचो नारी पंच मार्क दिशा सुनावै बंगाल मद मद गावै ललत बलाव लगावै अपनी अपनी पांत आट पुत्र पैर विके गावै गायन पात्र द्वितीया मालको साका लापे संग रागनी पांचो थापे गौड़ करी हरदेव गंधारी गंधारी से उती उचारी तदासरी ए पांचो गाई मार राग को सक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा परबल चंड को साके अभारा खोकड़ियो पहरा दंद गाय अट माल को सक संग लाए पुन आयो हंडोल पंच नार संग अड़सुत उठै तान कलोल गायन तार मिलावई तेलंगी देव करी आई बसंती संधू सहाई सरसा हीरी लै पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमा नंद पाद कर आए चंदर बिंब मंगलन सोहाए सरस बाण हो आए बनोदा गावै सरस बसंसक मोदा अठ पुत्र मैं कही सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पट मंजरी टोडी कही आलाप कामोदी और गुजरी संग दीपक के ताप कालंका कुंतले और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौराव कांदा कल्याणा

और राम कली महला तीजा सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जीओ सतनाम वाहेगुरु जी सतनाम।

गुरु वाहे गुरु, एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लईं त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरी है करनो निधा वैताय। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय दसों ही पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार जी का ध्यान धरके बोलो जी। सतगुरां दे साजे निवाजे पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही। देख के अंडठ कीता तिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चिराए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिद्धक केसां सुआसां नाल निभाया। असह ते अकह कष्ट सहारदे होए शहीद हो गए तिना समूह पुरातन अते वर्तमान समें दे शहीद सिंघ सिंघणियां पचंगियां पचंगणां दी पावन कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां तख्तां

आपे बहुरंगी जोत सुपावे नानका साई गल चंगी जेहा चिरी लिखया तेहा हुक्म कमा

कर कृपा मोहे नाम देहो, नानक दर सरीता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जपो सतनाम सतनाम।

0: जी वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतह। सतगुरु महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान जुड़ मिल बैठी साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दे पाणे अनुसार जो पिछले दिनी भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी वाहिगुरु वालों बख्शी हुई सुवासां रूपी पूंजी नूं संपूर्ण करदे हुए पंज भूतक शरीर त्याग गए सन। तिन्हां दी सदगति कल्याण हित सेवक परिवार ने अपने ग्रह विखे जिथे उन्हां दा निवास सी श्री सहज पाठ प्रकाश करवाए। सतगुरां दी दरसाई हुई मर्यादा अनुसार वाहिगुरु दे पाणे विच भोग पाए गए हन। शब्द कीर्तन होया है। गुरु प्यारी साध संगत जिन्निया भी आप संगतां भोगते पहुँचे हो इस समय परिवार नाल दुख सांझा कीता है। वाहिगुरु दे पाणे विच सेवक परिवार वालों आप सब का धन्नवाद है। इत्थे समाप्ति है। एक बेनती मैं जरूर कर देवां कि जिस तरह इस परिवार ने ग्रह विखे पाठ करवाया जिथे उन्हां दा निवास सी मर्यादा इहो ही है गुरु प्यारी साध संगत जी कि घर विच मृतक दे प्रथाए बाणी दा श्री सहज पाठ जे नहीं बहुता समा तो श्री खंड पाठ हो गई क्योंकि उत्थे सुरत हुंदी है रूह हुंदी है जिथे सारी जिंदगी आसन लाया हुंदा है। भावें आपां गुरु घर विखे करवा दिंदे हां ठीक है जे किसी कोल नहीं जगह मजबूरी बस एक अद्धा कमरा हुंदा रहिण नूं कईआं कोल सो पर मर्यादा है भी जिथे प्राणी ने चढ़ाई की है घर विच उथे पाठ हो कल्याण हुंदी है। सेवक परिवार ने ये सोने पूरने पाए ने उन्होंने तो आप नहीं मोड़ सकते पर सारे परिवार ने पाठ सुनिया मेरा टाइम नहीं लगा जाने का वक्री गल है मैं भी चाहता सी सो सिंगा ने पाठ सुना के किया सारा पाठ घर विच सुनिया सारे परिवार ने एक मर्यादा सतगुरु कृपा करते ने फिर साध संग जी बख्श लेंदे ने सो नहीं तो मोह टुटना बहुत औखा हुंदा है घर नालों परिवार नालों। सो इस तरह आपां नूं सारिआं नूं यतन करना चाहिए खेचल करनी चाहिए है कम ना भी होवे प्राणी दे प्रथाए सारी जिंदगी अपने वास्ते कम किया हुंदा है वड्डिआं वडेरिआं नूं सो सारिआं नूं आपां नूं चाहिए है उदम सतगुरु कृपा करन परिवार नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शन बच्चिआं नूं चढ़दी कला प्रदान करन सच्चे पातशाह। इत्थे समाप्ति है संगतां वास्ते महाराज दे भाणे विच रुखा मिसा लंगर तैयार है सेवक परिवार वल्लों लोड़ अनुसार जिन्हां ने अजे तक प्रशादा नहीं छकिया वो लंगर हाल विच पहुँच के प्रशादा छकन की कृपालता करनी जी। बोलदिआं होई भुल चुक की माफ़ी बख्शनी फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।